तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाले, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर लई। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों वली कंधारी जिहड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने जोर दे नाल पानी बंद कीती बैठे। जेड़ा मेरा चेला होवे उसनूं ए पानी मिल सकदा। धन गुरु नानक पातशाह क्योंकि जगत जलंदे नूं ठारन जो आए सन, जा पहुंचे वेख लैंदे सन भई किथे सृष्टि नूं दुख दिता जा रहा, किथे रब दी साजी होई सृष्टि दुखी है ते फिर आप जाके सुख वंडदे सन। पापी नूं मारिया नहीं, पापी नूं तार देना। जिथे भी पुन्ना दा गलत इस्तेमाल हो रहा सी, पुन्ना नूं पुन्ना वाले पासे जोड़ दिता। वली कंधारी कर्म कांड करके पत्थर ते बैठ के बड़िया रिद्धियां सिद्धियां विखांदियां विखांदियां पत्थर ते बैठा होया, आप भी पत्थर हो चुका सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने मरदाने नूं भेजिया, जा मरदानिया पानी लैके आ। मरदाना एक वेरी गया, दूजी वेरी गया, तीजी वेरी गया, बड़े अहंकार दे नाल कहन लगा जे इतना ही तेरा गुरु शक्तिवान है तां आप क्यों नहीं कढ लैंदा पानी, तू मुसलमान होके काफर दी संगत कर रहे, कुछ अकल कर। ते मैं काफर नूं पानी नहीं दे सकदा। धन गुरु नानक पातशाह अच्छा अहंकार जो करना सी मर्दानिया, आ दो पत्थर पुट सत करतार सत करतार नाम जपदिया। जदों ए दो पत्थर चुके तां विचों अमृत रूपी चश्मा फुटिया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण जितना पानी जितना जल ए काबू विच रख के बैठा सी ना वली कंधारी, सारा दा सारा तले आ गया, उपर जल सुक गया। गुस्से विच आके लोहा लाखा होया होया मेरियां शक्तियां दा इसनूं पता नहीं, मैं की कर सकदा हां। आ मैं हुणे दसदा हां, अपनी शक्ति दे नाल एक वड्डा पत्थर रोड़िया पहाड़ी तो। मर्दाना कहन लगा महाराज कृपा करो मेहर करो, इस पौजल तो बचना बड़ा औखा है। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया तू करतार नूं चेते रख, जलाल विच रहो। करतार दे नाल जेड़े जुड़े रहिंदे हन ना उन्हां दा कोई वाल विंगा नहीं कर सकदा। एदा पर्वत दा पर्वत रुड़ के आ रहा है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिश कीती कृपा कीती कोट ब्रह्मंडां दे बादे बादे। जां आपने नदर कीती तां ए पत्थर नेड़े ही आके जदों रुकिया तां आपने झट इस पत्थर ते पंजा ला दिता ते इस तरह लग्या जिवें मोम दे विच पंजा खुब जांदा है। सारा जगत जो वली कंधारी तो दुखी सी धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विच आ जुड़िया। हुण वली कंधारी सोचदा है भई मैं तां कखों होला हो गया, एडियां शक्तियां दा मालक सां पर मेरी तो कोई भी वाह ना चली। हो सकदा है ए मेरे अहंकार नूं दूर करन लई आया होवे, आप खुदा आया होवे, मेरी रिद्धियां सिद्धियां अहंकार ते क्योंकि पुन्ना ते रिझदा रब। हो सकदा मैनूं तारन लई मेरियां रिद्धियां सिद्धियां मेरे अहंकार दे सदके मैनूं तारन आया होवे, मन नीवा हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਬਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦੀ ਮਿੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਛਿੜਤੇ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਾਮ ਭਰੇ। ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦੇ। ਪੋਟ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ।

तारदे होए जिथे जिथे भी गए वड्डे तो वड्डे पापी नू किवें तारिया जिवें सज्जन नू संत बना दिता भूमिए चोर नू साधु बना दिता आप ही नहीं अनेकां नू गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़न वाला बना दिता बिपालपुर दे कोड़ी दे पास गए ता उसनू भी फिर यही शुभ उपदेश दिता पाई जिस वाहिगुरु ने तैनू सोना ए मनुच्छा जन्म बख्शिया सी अखां नक कन मूह आरोग कंचन वर्गा शरीर दिता सी जे तू शुकराना कर दो जे तू उसका सिमरन कर दो ता अज तेरी ए हालत ना होंदी बचपन खेडां विच जवानी विकारां विच तैं बतीत कर दिती उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं तू भुल गयो विसार दिता ते जदों तू विसारिया तां फिर दुखां ने आ घेरा कत्या ते अज तेरी ए हालत हो गई याद रख जिस तरह हुण तेरा शरीर कोड़ी है ना तैनू कोई नाल नहीं बैठन देंदा शहरों बाहर कढ दित्ता लोगां ने तैनू जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावेगा आत्मा तेरी कलंकित होई होवेगी दरगाह विच भी तैनू कोई कोल ना बैण देवेगा क्योंकि कोल ओही बैठदे हन जिन्नी तेरा नाम ध्याया धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने जिसना ने अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ध्यावना कीता है सिमरन कीता है इसलिए उन्हां दा ही आउणा सफल होया है।

0: सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राख है निरंकार। सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास समारे। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को देव राई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत राखे, ताकि गत मित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को पूना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दिस पर घटाया। नीकी कीरी मैं कल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है। जिसका शासन काटते आप, ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन कल्त बोपात, किसके कर्तव्य बिरथे जात। मारे न राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी। बारम्बार बार प्रभ जपिय, पी अमृत इहु मन तन तृपिय। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही दृष्ट आया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तिपताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जहवा दिन रात, प्रभ अपने जन की दात। करे भगत आत्म कह चाये, प्रभ अपने से रहे समाये। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म बिछाने। जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले, मन तने अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिठावे। अवर सयान बसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा,
1: तिर्थ प्रभ आया।

0: में आन बहुत मिल बैठत जदों सुखां दे साधन होंदे हन चार पैसे पले होण मनुख दे ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आखे घेरते हन रहस चोहूं दिस घेरै हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन ता फिर विपत परी सब ही संग छाड़त कोई दुख आ लगे मुसीबत पै जाए धन दौलत चले जान ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे ते पासा वट के पासे चला जांदा है भई किदे कुछ मंग ही ना दवे उच्चारण करो श्री
1: वाहिगुरु
0: इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन सुख

घर की नार बहुत हित जांचो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियांदा है। चंगे तो चंगा बस्तर कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन घर वाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ कर दे, पर जदों विपता पै जावे तां घर वाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांसो, सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भागी। ए झूठा व्यवहार झूठिया प्रीतां संसार दियां, हजूर कहंदे ने इथों तक भी नहीं निबदियां, दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई, किथे कोई तेरी सहायता करेगा। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना साक भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।

छोटे बच्चियां नूं उन्हां मावां दे सामने मारना, उन्हां दे छोटे छोटे टुकड़े करके जिवें कोई फुल्लां दा हार बनांदा है, बच्चियां दे टुकड़े करके उन्हां दा हार बना के मावां दे गल विच पा देना ते नाले कहना मुसलमान बन जाओ, नहीं ते तुहानू भी इसे तरह खत्म कर दिता जाएगा। पर तन हन ओ गुरु के सिंह, गुरु कियां सिंघणियां जिन्ना जान ते दे दिती पर धर्म ना हारिया। ए जुलम हो रहा सी पर गुरु के सिंह कदी जुलम तू घबराई नहीं। उस वक्त दी ए इतिहासक बोली के गुरु के सिंह मीर मनु दे

तो ज्यों ज्यों सानू वढ़ रहे हैं असी खत्म नहीं हो रहे सगा होर वधे जा रहे हैं। तू एक दिन जरूर मर जाएगा पर गुरु के सिंह कदी खत्म नहीं हो सकते। क्यों कि सच वास्ते लड़दे ने इंसाफ वास्ते अपने वास्ते नहीं दुनिया वास्ते लड़दे ने।

सताए हुए हिंदुस्तान दे लोग जेडे गुरु साहिबां नूं पसंद करदे सन उन्हां विच मुसलमान भी सन जेडे मुगल हकूमत दा जुलम पसंद नहीं सन करदे। ओ सारे लोग गुरु साहिबां दा हमेशा साथ दिंदे रहे ने जेडे इंसानियत नाल प्यार करदे ने क्योंकि गुरु साहिबां दा एहो ही मकसद है रब एक है उन्हूं किसे नाम नाल याद करो।

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नूं अपना स्वरूप दिता है ते ना लिखे आ, जदू तक खालसा खालसा रहेगा वो कदी हारेगा नहीं, मैं भी उहदे नाल रहांगा।

जिहदे विच कोई विकार नहीं, वैर विरोध की भावना नहीं, जिहदा जीवन विकारां तों उत्ते है, ओ खालसा ते खालसा गुरु दा रूप। पर बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दा पहरावा ते है पर ओ गुरु के सिख नहीं। दाढ़ी भी रखी है, केस भी रखे ने, पर जदू तक जीवन उच्चा नहीं ओ गुरु के नहीं बन सकते। कईयां दा पहरावा संता महापुरुषां वाला, भगतां गुरमुखां वाला, पर ओ ना भगत ने, ना गुरमुख ने, ना सिख ने, ना ओ खालसे ने। सिर्फ पहरावे दे नाल कोई इंसान गुरु दी खुशी प्राप्त नहीं कर सकदा। ऐसी गल नहीं, किस दुनिया विच संत महापुरुष गुरमुख नहीं है। गुरमुख भी हैगे ने, भगत भी हैगे ने, महापुरुष भी है ने, खालसे भी हैगे ने, पर बहुते धर्म तो दूर, गुरु तो दूर दुनिया नूं धोखा दिंदे ने। महापुरुषां दे

असलियत वाला जीवन नकला भरिया जीवन नहीं, अंदरू होर बाहरू होर जेहो जिहा जीवन होवेगा ते कौम नू हमेशा औकड़ां दा सामना करना पवेगा। जगह जगह सिर ना चुकाओ, वखरे वखरे राह ना

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आया। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसनु पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम बुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ऐ अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चलदा, बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलदा की किया गया है। असीं किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असीं अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी? कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो फिर भी राम ना बैठे रहिए। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह की ही रही। कि असि अजिहे लोग हां? गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है जा नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसनु खोजन की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है, इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर निकल की पंचाखी से पंक्ति के इस दिया इंद्रियां बलशाली हैं, हुण ओ धुई फिर दिया हैं, ओ खिची फिर दिया हैं सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी है, धुई फिर दी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा, घोड़ी किसे दे पास होवे ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। ओ उसनू रोकना चाहे ओ रुके ना, किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इस नू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, ते इस नू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है, उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करन दी कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दियां आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इस नू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना, आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हूं, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आप नू याद हो जाएगी। सब माया मोह
शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई। एक दफा फिर, सब माया मोह शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई। इसका अर्थ यह है, सब माया मोह शरीर हर किया, और जितने भी शरीर हन, पशुओं के शरीर, कीड़े मकौड़ियों के शरीर, पानी च रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर, उड़न वाले पंखियों के शरीर, भाव के जितनिया भी फॉर्म्स हैं, जितने भी शरीर हैं, कहिंदे उन्हां सारिआं दे विच माया मोह है। वो सारे गुण जड़े मोह, ममता, क्रोध, ठगी, इतआद, वैर, मेर, तेर, अपना, बिगाना, ये सब कुछ बाकी तमाम शरीरां दे विच है। अते वो सब कुछ इस शरीर दे विच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर उन्हां सबना नालों उत्तम है। सब माया मोह शरीर हर की है। ए जितने भी साडे सुभा हन, कहिंदे हन कि कोई तुहाडे नहीं हन, ममता, मोह, अटैचमेंट, जो ईरखा, वैर, ये सब कुछ जो है माया मोह सारे बाकी शरीरां दे विच है, पर मनुखी शरीर दे विच जो सिग्निफिकेंट गल जड़ी है वो की है, कहिंदे हन विच देही मानुख भगत कराई। विच देही मानुख भगत कराई, कहिंदे मनुख दी देही दे विच, कहिंदे हन एक ही गल दी विशेषता है कि इस देही दे विच भगती हुंदी है, इस देही दे विच भगती कीती जा सकती है। इस करके ये देही जिहड़ी है सब तो ज्यादा सुपीरियर फॉर्म है, सब तो ज्यादा उत्तम है। गुरु महाराज जी कहिंदे हन, अवर जोन तेरी पनहारी, बाकी सारिया जूना तेरा पानी भर दिया हन, तेरिया गुलाम हन, तेरिया दास हन, तू जो चाहे उन्हां तो करवा सकदा है, हाथियां नू नचा सकदा है, शेरां तो तू डांस करवा सकदा है, हर जून जो है उसनू तू जिमें चाहे वरत सकदा है, तेरा पानी भरन गियां। कहिंदे हन अवर

बुरे आईया पाचे धर्म हजूर, हजूर का बचन है कि जो कुछ तू कर रहा है अकाल पुरख वाहेगुरु वेख भी रहा है ते लिख भी रहा है। ए मत समझ भाई ए जग मिठा ते अगला किन्ने दिठा, जदों हिसाब हुंदा है तां रत्ती मासे दा भी हिसाब हो जांदा है, जदों मालक बख्शिश करे तां फिर ओदा लख दा भी हिसाब नहीं लैंदा। इसलिए ऐसे कर्म ना कर कि जदों तू निरंकार दे द्वार जावे तेरी आत्मा कलंकित होवे, पापां दा बोझा तेरे सिर ते होवे ते फिर की मुंह विखाएगा। इसलिए हजूर कहंदे हन कि हर वेले तेरे हर एक काम ते उसकी अख है, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जेड़े चंगे कर्म करदे हन ओ नेड़े हो जांदे हन निरंकार दे, उन्हां नूं सद के गुरु अपने पास बिठा लैंदा है, आ मेरे बच्चे तू बड़ा चंगा काम कीता है। ते जेड़े अमोलक श्वास पा के नाम नहीं जपदे कुकर्मा विच पै जांदे हन, नशियां विच पै जांदे हन, माड़िया कमां विच पै जांदे हन, ते फिर जिवें इत्थे लोग उन्हां कोलों नफरत करदे ना, कोई कोल नहीं बैठन देंदा, इसे तरह उन्हां दी आत्मा कलंकित हो जांदी है। उत्थे भी जाके वो आदर नहीं पाउंदे, निरंकार फिर उन्हां नूं 84 दे दुखां विच गेड़े विच भेज देंदा है। ते हाल यह हो जाता है कि जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, एदी सजा का भागी ना बन। इसलिए तेनू सोहना मनुच्छा जन्म मिलिया, इसनू जप जप के मिठे बोल बोल के जा, सेवा करके कोई उपकार करके जा, तेरा शरीर ना रहे तेरी याद सदा अमर रहे। इसलिए पाप ना कर बंदिया।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा।